तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी, प्यार जो टूटा प्यार जो टूटा चांद न चमकेगा कभी। आहा, आहा, आहा, आहा।

वाह, महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल।

0: मैं परवाना तू शम्मा,
1: ओ यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना मैं शम्मा,
0: ओ यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा,
1: यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना।

0: चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल मेरा यार, चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल।
1: बॉलीवुड क्लासिक से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
2: दिलबरा